0: तुम कुफा भी
1: बमंगा तक कमी नंबुमंगा केर संजय अंबाई सेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन सेने बुमाइंस अनोटन समास निनी नमी चट्रम सोफा अंड्रासों अंड्रासलाव तेनिस फिजरा न ताने ते प्यांत चट्टे वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले लेफोलु निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते उटन फिट तीन ले प्रेस तो इस मुझान्स ते ना प्रेस ना वो टुने काटे मोबिल ते फिर पेरां फुटसे ले सुरात ना ते ते से सेम बस सुरात प्रेस तो ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वो टुने वे तो ना मेनो तुझी सन्ना तो न तुम रखाये सिस्टिलो इस

0: क्लास तुम कुफा भी
1: आनक एच आर मथुरी कदमान सम्मान अरे क्यों मस तीन तानक युंदान दात तिमान रुचुरुच फैने फटुटक तोमरी ह्यान चो आरे फसक पुटक नुनिया बेन याफजान कसाव लैना बेन तान राम जुनगुन्ना आज तो मना चनाओ फच मुंबनाओ कूर जो वे देश के तुझो सौर का जन रिया मंट रच फटो कूर जे अले निफ सैना ना जयाद निफियाना को फेन जावा मिफमा मिला चाहिए ताकतूर ए फंतौना मार जो सुफन्याफ नाम नौ जान जाम फुमारे ने मेर चेर चौंत साइन सिंतित क्या न्यासा मनुक निमा स्वांग उसा काफ्च चैनी ना दवे इन रै मां नेफ न्यूफनी सारेत नितातेरा को जंबूल नुटसेक ततोची निश्यान माच वूला तो उंपेला तना चिक्या नुकेंडी ना चीपीक नेफ लासन रे नौ इवद्यानां तापादांबा अनापेना ना तुलूगो आर न्यांब नुन्यांगांब रा मिश्त्याताओ अकांजो ना तुमुआ नौ फामा मीर फीर लोट तिर्रिन चिकिती नेफ एच मतुरी फा दलाना न्यांदाद रेसा कुल नेफा लानाग कन्याद सैन रै नुएत न्यापा तुर जानाग Sita mursum naiko, fifa miad bensaiko. Rampi chufut nyaz, ifinda tan nyato varata kaizanu karamai. Metu vita nin karata. Kanzu reku na izo, fan lala nusakana na rampi chufa marai. Nisi manchu fitu kana nato kajitsiki atu. Kanisa retu zemande, dea vili avu kufa andanu relebe. Ary zay le mavo sady mahavaky fo nimpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay Et ton poukou bêta raïn.
0: Chante ton poukou là, chante ton poukou vave.